0: तो यहाँ छोड़ के बाहर जावा बोले थे जहा
1: नहीं जान हम जाबे निकरन हम नहीं है लरब
0: अभी जंगल ला मांगा थे पूरे घर बार ला मांगा थे एक गांव ला मांगा थे तापमान दिया
2: नहीं दिया ना हमन घर दूरा ला देंगे ना हमन जगह जमीन देंगे ना हम लोग जंगल देंगे कुछ नहीं देंगे हम

0: तो यहाँ छोड़ के बाहर जावा बोले थे जहाँ
1: नहीं जाना
0: अभी जंगल ला मांगा थे पूरे घर बार ला मांगा थे एक गांव ला मांगा थे तापमान दी है
2: नहीं दिया ना हमन घर दूरा ला देंगे ना हमन जगह जमीन देंगे ना हम लोग जंगल देंगे कुछ नहीं देंगे हमें।

पहाड़ पर लोग पहाड़ का पानी पीते हैं, सरकार का पानी वहाँ तक नहीं पहुँचता। मातृभाषा में कोई स्कूल नहीं पहुँचता, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं पहुँचता, बिजली नहीं पहुँचती, इंटरनेट नहीं पहुँचता, वहाँ कुछ भी नहीं पहुँचता। साफ जहाँ कुछ भी नहीं पहुँचता, वहाँ धर्म और गाय के नाम पर आदमी की हत्या के लिए इतना जहर कैसे पहुँचता है।

पानी वहां तक नहीं पहुंचता, मातृभाषा में कोई स्कूल नहीं पहुंचता, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं पहुंचता, बिजली नहीं पहुंचती, इंटरनेट नहीं पहुंचता, वहां कुछ भी नहीं पहुंचता। साफ जहां कुछ भी नहीं पहुंचता, वहां धर्म और गाय के नाम पर आदमी की हत्या के लिए इतना जहर कैसे पहुंचता है। साहब जहां कभी नहीं पहुंचता, वहां धर्म और गाय के नाम पर आदमी की हत्या के लिए इतना जहर कैसे पहुंचता है।